का शब्द लतन है, हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जिस मन लगा ए हुआ सुबह शब्द से।

मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने, गोपाल गोमन प्रतिमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्ति।

0: सत्यता युग मेला सच्चे तेरे कर्ण सच्चे ब्राह्मण सच्चे तेरे सच्चे आकार सच्चे तेरे कर्ण सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरे कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दाके ला करो सच्चे शब्दान सच्ची सब
1: सच्ची तेरी से सच्ची सलाह सच्ची तेरी खुद सच्चे बादशाह ना सच्चे सच्ची जो मर्ज में सो कच निकच माला पहला
0: बड़ी बड़ी बड़े बचारा बड़ी बड़ाई का सच नो बड़ी बड़ाई के नीचे दाओ बड़ी बड़ाई जाने वाला बड़ी बड़ाई बुझ सब पाओ बड़ी बड़ाई जो पूछना दात बड़ी बड़ाई जाए आप नानक कथनी जाए खीता करना सर्ब जाए महिला दूजा ए जग सच्चे की कोठड़ी सच्चे का विजवास इतना उसमाइल अपने हुक्म कर बनास इतना पानी कर ले इतना माया सिनवास एम भी आपने दम पे किसी ने यार नाच तो गुरु मुख जानी जान को आप करे पर दस मोड़

0: संतोषु जदगदी सतवट ए जने जी का गई तपांडे कत ना टूटे नाम लगे ना जले न जाए तन समान स्नान का जिगल चले पाए तो प्रमोलना है बजाऊंगे पास
1: का कचड़ाई गुप्त मतिया ओ मुआ चढ़ पिया बेतका के अलग चोरियां

0: सगल्या पावलक्या सरले नानक निरपाव निरंकार सच एक सगला पहला
1: नानक निरपाव निरंकार और कच्चे राम रुमाल कच्चिया कल कमणिया कच्चे बेचार कच्चे चरण से गम पूरे ताल बाजारी बाजार माइकले बाजार गावे राजे राणिया बोले।

0: अजत सकलेश्वर होए उठ जाई सिद्धन होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन भाओ जिना मन भाओ
1: पौड़ी ना उतरा निरंकार है नाय ले नरक न जाइए ज्यो पिण सब तिस्ता देखा जे आग वाई है।

0: जान तो कैसे हो जानो इत संजम दुख जाए
1: औड़ी सेव की तीसन तो कई गिनी सज्जो सझाया मुनि मंदे पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया मुनि दुनिया तोड़े बंदर ना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला निद वह चढ़ सवाया बड़ी आई।

पाया, बार जात को पीले आया, वृंदावन में रंग किया, काल में वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई अलो पाया, नीर वस्त्र कपड़े पहरे,

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है सो जानू काचा।

जन को प्रभु अपने कतान जो तू करे करावे स्वामी सा मतलब परवान चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चल कमल नानक आला दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

मध्यन होत साधु तुरे आवन जानू रे थित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुर नारायणू दा गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानक सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास करदा है, मन लोकां पास फरोलदा है। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। ते अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच

मन कब हूं नहाए। ताल जो जाने पासा, ताल जो जाने पासा, ते जन कब हूं नहाए।

शिवा पर मोह है शब तन मन से कब हूं न करो शिवा पर मोह है शब तन मन से कब हूं न करो ना डरो अरसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो अर सिखाओ अपने ही मन को ए लाल जहां।

आन को दान न लागत नी को, आन को दान न लागत नी को, आज भले इनी को दियो, आज भले इनी को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ दैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हन। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी दैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर करतार सिंह।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है कि इंसान चंगी तरह बोल सकदा है, इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है। फिर पढ़दे क्यों नहीं, पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

क्या फरमान दिए, आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ये आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी।